0: कर लावह गोबर तरण न जाय। धोती टिक्का तैज पमाली तान मलेच्छ खाई। अंतर पूजा पढ़ेक ते बन संजम दुर्गा भाई। छोटी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करने वा चुरी भगान तन गलता

0: ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
1: सब वो सुत भन्ने दूजे लग जाए, जमन मरना हुक्म है पाने आवे दा। खाना पीना पितृ वेद तो लिख संभागे, मन का सुत लोभ है।

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जैस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई

सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया सह साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रहा नाल चराए गए गुरद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तखता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रथ आरे आए तो देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु।

दान बबेक दान विसाह दान प्रोसाह दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गिनिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत

कुरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दशाह जिस पा

जाए पुछो सुहागणी किन्नी बाती सह पाइया जो किस करे सो भला कर मानिया हिकमत

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट समय तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख समय करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सतर हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा राख लिहो मोए राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्म बपतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्म जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनाया देव दैत जक्षन उपजाया आदंती के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सिवगुन सुख दियो सतरन को पलमो बध कियो कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट की पट पट की जाने जबद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जीते बदन सृष्ट सब तारै आपे अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद सांब ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कस भेद न जानत महादेव को कैत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा
एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। पंडज जेरज सेतज कीनी उत्कुज खान बहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव याद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद घर मो सब होई दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास देता है उबारा। जिन नर नाम तिहार कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ती को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गहो तुहार द्वार। बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल

हम अवगुण परि एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहाउ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुर सहौ चटिया। तुद डिठे सच्चे पात साह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहांद साहु। जिस पास बैठिया सोही है, सब ना दावे साहु। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहांद साहु। जिस पास

बंदे चसम दीदं फनाय दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाय रहाओ गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराय।

0: ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत जूने सैपम गुर प्रसाद दासा महला पहला बार श्लोका ना श्लोक बिमहल्ले पहले के लिखे तुंडे आसरा जे के तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानसते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सोचन दा युग वै सूरज चढ़े हजार एते चरण होंदे आ गुर बिन कोरे अंदार महला पहला
1: नानक गुरु नचेतनी मन अपने सुचेत छुटे तलवाड़ ज्यों सुनै अंदर खेत खेतै अंदर छुटया कहो नानक सौ नाह फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुवाह पौड़ी अपनी।

0: सार ओए जे आखे सो तू है जान इतना बे तेरी सार नानक भक्ता पुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राते गुणवंतिया पाचार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ पिकम्यार काड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर।

पौड़ी से किसी तो किसी ने सचो सत्य आया उन्हें मंदिर पहना रखूं कर सुकृत हुक्माया उन्हें दुनिया दौड़े बंदरान पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला।

लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गाखे ताहा दीपालुआ मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज।

संभाले सपना जिनकर तय कर ना किया चिंता बिकरने ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी सोचते।

0: लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती और जा पड़िए जेते सास नानक लिख है गल और हो मैं चकना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया बहु तीर्थ पवया ते तो लव्या बहु बेख किया देही दुख दिया सहोबे जिया अपना किया अन ना खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पैरे एनस करे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पाग्यो पे ताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विन नामै किछ थाए ना पाए रह बेबानी बड़ी मसानी अंध न जाने।

0: गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो।
1: समरथ गुरु सिर हाथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरयो भन दास सो आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।
2: अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखट फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर